ने शुक्रगुजारी से मुंह फेर लिया, बस हमने उन पर बंद तोड़ सैलाब छोड़ दिया और उन्हें उनके बागों के बदले दो ऐसे बाग दिए जिनके मेवे बदमजा थे और जिनमें कुछ तो झाओ के पेड़ थे और थोड़ी सी बेरियां। ये हमने उनको नाशुक्री की सजा दी और हम सजा नाशुक्रे ही को दिया करते हैं। और हमने उनके और मुल्क शाम की उन बस्तियों के दरमियान जिनमें हमने बरकत दी थी एक दूसरे के मुत्तसिल देहात बनाए थे जो सामने नजर आते थे और उनमें आमद रफ्त का अंदाजा मुकर्रर कर दिया था कि रात दिन बेखौफ खतर चलते रहो। तो उन्होंने दुआ की कि ऐ परवरदिगार हमारी मुसाफतों में दूरी पैदा कर दे और उससे उन्होंने अपने हक में जुल्म किया। तो हमने उन्हें नाबूद करके दास्तान बना दिया और उन्हें बिल्कुल मुंतशिर कर दिया। इसमें हर साबिर और शाकिर के लिए निशानियां हैं।

0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300338559।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश, आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
1: हाँ नहीं अचो, मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालानी।
2: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300320437202, 0242460100।

0: में मौजूद आहिन फौजी भाईरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-8151।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
2: न अदा।
4: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर एफ एम 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त एफ एम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर क़िस्म जी एडवरटाइज़िंग हलंदी।
2: अदा जल्दी कर, मुखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
3: राबते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अमेरिकी फौज जापान के डीं भी ईरान ते शदीद हमला आवाज चार बाग बंदर अब्बास के धमाकन से गूंजी उठा। गवर्नर हमागास जो चवण आए तो अमेरिकी हमलन से केश में फिश पाउडर ठाईदड़ फैक्ट्री के नुकसान पहुंतो है। फैक्ट्री खाली हुजण सबब जानी नुकसान न थियो। अमेरिकी सेंट्रल कमांड पारा ईरान ते हमलन जो ताजो सिलसिलो मुकम्मल करण जो ऐलान। सेनेट काम जो चवण है तो ताजन हमलन में ईरानी कमांड मर्कजन फिजाई दिफाई ड्रोन सलाहियत साहिली निगरानी वारन मर्कजन के निशानो बनाया वो। बंदर अब्बास में भी फौजी ठिकाणन के निशानो बनाए तबाह कयो। कार्रवाई जो मकसद हरगंज लांग में हमलन की ईरानी सलाहियत के कमजोर करण हो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है तो खेस डेडलाइन डेण पसंद ना है। ईरान के पैंजो रवैयो ठीक करण घुर्जे। डोनाल्ड ट्रंप गुजरियल डी धमकी डींदे हो तो ईरान मुआहदो न कर हफ्ते बिजली घर ए पुलन के तबाह कयो वेंदो। ईरान में अजा कुछ जंग विढ़ण की सलाहियत है पर यह घणी ना है। अमेरिकी फौज ईरान की तवानाई हदफन के आखिर में निशानो बणाईंदी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ है तो ईरान कदें भी जंग की आजियां ना कई न वरी करे तो पर मुल्क की कौमी सलामती मुफादन के तहफुज ला हर वक्त तैयार रो है। दुश्मन की हिकमत अमली तब्दील ना थी। ईरानी फौज के जाहरियत जो मुकाबलो कर आजादी हासिल है। ईरानी परदे वजारत के तर्जुमान इस्माइल बकाई जो चवण है तो ईरान जो फिलहाल गालिम जो को भी इरादो ना है। अमेरिका पैंजा वायदा न पाड़िया तो मुफाहमती यादाश्त तहत जिम्मेवार खत्म क्यों बी धुर जिम्मेवार खत्म क्यों तो ईरान के भी पैं जिम्मेवार पासो करणो पवंदो। बिलावल भुट्टो जरदारी पाक फौज के रेड लाइन करार दई छो। कश्मीर मसले के हल लाए ट्रुथ एंड रिकन्सलेशन कमीशन जोड़ने की भी तजवीज पेश। आजाद कश्मीर के शहर मुजफ्फराबाद में पार्टी अगवान के खिताब कन्दे बिलावल भुट्टो जरदारी चयो तो पाक फौज असांजी रेड लाइन है उन खिलाफ का भी गाल बर्दाश्त न कंदासी। आलमी साजिशन के समझणो पवंदो लफ्जन के दुरुस्त चूंड करणी पवंदी। कश्मीर में दहशतगर्दी वारी सियासत की हिमायत न कंदासी। मौजूदा हालतन जो मुकाबलो ताकत से नथो करे सकजे जिम्मेवारी जो मुजाहिरो करणो पवंदो। मौजूदा बोहरान एक वफाकी वजीर जी करे थो। वफाकी हुकूमत मसलो हल करे कश्मीर जो मसलो के जिम्मेवारी जो मुजाहिरो करणो पवंदो। मौजूदा बोहरान एक वफाकी वजीर जी करे थो। वफाकी हुकूमत मसलो हल करे कश्मीर जो मसलो कश्मीर में ही हल करणो पवंदो। मोदी

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03005569।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 03013992836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: Aashiq Honda Showroom Mehrapur. Atlas Honda Motorcycle Group Pur Etmat. Aima Akhtar 3S Dealer. Aashiq Honda Motors Mehrapur. Jite nai motorcycle ji sale. Company aje mukarar kel rate de dastiyab ahe. Service Center. Atlas Honda Limited jo warranty claim center. Service area. Jite Honda Motorcycle ji behtareen service kai vendi ahe. Honda company aja tamam genuine spare parts. Khususi riyat te maujood. Aashiq Honda Motors te. Pahenje Honda Motorcycle ji tuning karayo. Computerized Japanese stitching machine je zariye. जिन्हे में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
1: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

एक लड़के पे वो मरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है।

0: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए, घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें। रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन, एमए डीएचएमएस सिंध, आरएचएमपी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा, खमीस जुमे, छंछर आचर।

0: मरीजनि खे दवा स्टोर तां वठणी पवंदी। माहिर अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमज़ोरी कन जो वहण कन जो सूर घटि ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिलि जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दनि जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फुरियो ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ
1: 0300 3240 72 0242460100।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
3: न अदा।
0: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मीरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब होयो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हाँ दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मीरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मीरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94

0: ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकर कालेबाफ चयो आहे त ईरान कॾहिं बि जंग जी आजियां नाहे कई ऐं न वरी करे थो, पर मुल्क जी क़ौमी सलामती ऐं मुफ़ादनि जे तहफ़ुज़ लाइ हर वक़्त तयारु रहंदो आहे। दुश्मन जी हिकमत अमली तब्दील नाहे थी। ईरानी फ़ौज खे जारियत जो मुक़ाबलो करण जी आज़ादी हासिल आहे। ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई जो चवण आहे त ईरान जो फ़िलहाल ॻाल्हियुनि जो को बि इरादो नाहे। अमेरिका पंहिंजा वाइदा न पाड़े मुफ़ाहमती यादाश्त तहत ज़िमेवारियूं ख़तम कयूं, ॿी धुर ज़िमेवारियूं ख़तम कयूं त ईरान खे बि पंहिंजे ज़िमेवारियुनि खां पासो करणो पियो। सखर जे सेंटर जेल में क़ैदी मुबैना तौर फाहो खाई आपघात करे छॾियो। 24 वरियनि जे क़ैदी दिनेश कुमार जेल इस्पताल जे वॉशरूम में अगट सां फाहो खाधो। जेल इंतिज़ामिया जो चवण आहे त आपघात कंदड़ क़ैदीअ खे शराब जे केस में जेल मुंतकिल कयो वियो हो। वारसनि लाश पोस्टमार्टम कराइण खां इनकार करे छॾियो आहे। ऐं 88 मोरीअ में बिरोही धुरियुनि में ज़मीन जे तकरार तां झेड़े जो जरगो। धुरियुनि ते 85 लख ॾंड। लाल मोहम्मद बिरोही ऐं खैर मोहम्मद बिरोही धुरियुनि में 25 सालनि खां हलंदड़ तकरार ऐं झेड़े जो जरगो फ़ैसिलो अली ज़िले चेयरमैन अली अकबर जमाली ऐं ॿियनि जी सरपंची हेठि थियो। फ़ैसिले में 10 ॼणनि जे ज़ख़्मी थियण जो, ॿिन्ही धुरियुनि ते मजमूई तौर 85 लख रुपया ॾंड। धुरियूं ॾंड जी रक़म 2 महीननि अंदरि फ़ैसिले जे अमीननि वटि जमा कराईंदियूं।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300338569।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।

0: It's 11:50 a.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, जो कि आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 टिल 1 पीएम आपके मेरे साथ रहता है। और ये खूबसूरती भरा खूबसूरत सा साथ जो कि आज भी जारी और सारी रहेगा।
1: आते हैं तो रंग बन जाते हैं, ये माना के
0: पूरी 1 बजे तक प्रोग्राम में हम सबसे पहले वक्त की बात करेंगे। 11:16 जो कि पाकिस्तान का मियारी वक्त है, तमाम लोगों की घड़ियों में बज रहा है। और इसके अलावा जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में है, ट्रक में है, रिक्शा में है, कार में है, बाइक पे है, जिसमें भी जहां भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी, बट धन्यवाद। अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए, ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। खुदा खैरियत मौजूद और तवक्कुल खुदा खैरियत मतलू। जिन लोगों की सालगिरह है उनको कहेंगे मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैव अ बजट टू यूज। के अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून। वो लोग जो कि लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ बेटर, कुछ बड़ा, कुछ यूनिक, कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, तो विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारी बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए कि आप अपने हर काम में कामयाब होते रहें, आमीन। इसके अलावा मेरी आवाज जिन गलियों और शोबारों, शहरों और शराहों, वादियों और पहाड़ों, दरियाओं और मरगुजारों कारों मेरे पर स्टारों में या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है, तमाम सुनने वालों को, चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन बेगम, अहलन वसहलन, मरहबा, बखैर आगे ले जी आयानू, सब बिस्मिल्लाह, बोंजोर, शाओ नी हाओ एंड वेलकम इन टू जिंदगी गुलजार है। मैं हमेशा की तरह बहुत कुछ सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, और वो सारी बातें जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं वो सारी बातें मैं आपसे करूंगी। लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे, प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना, इस गाने के साथ आपको बताएंगे हम क्या कर रहे हैं। स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुजार है।

हैं, आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं तीन तरीके कार से. आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, एस के आर टाइप कीजिए, स्पीसी टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 8881 पे. कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है rajesh@facebook.com/gfm88 के पेज के ऊपर आपको मिलती है पोस्ट जिंदगी गुलजार है कि उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं. इसके साथ साथ आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488. इसके ऊपर कॉल कीजिएगा और कॉल करने के बाद बात कर सकते हैं आप लोग. दो अदर सेगमेंट होंगे हमारे जिसमें हम आप लोगों के लाइव कॉल्स को एंटरटेन करेंगे, ठीक है. सो ये होगा और इसी के साथ हम चलेंगे आगे और हम प्ले करेंगे एक और गाना और इस गाने के साथ हम जाएंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जानेब. आपने कहीं नहीं जाना, मेरा साथ देना है क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है.

0: सक्कर FM 88
1: सक्कर की आवाज।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एटमाट आईमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 03073592120।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो।
3: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69।

0: सत्या जी मेहरबानी छी दी कुछ हमारे पास दोस्त भी है। हमारे को बाजी थोड़े एक साल करता है हम तुम्हारे पास है। तो तुम उर्दू बात करते हो सिंधी करते है? हमारे को तुम्हारी बात समझ में नहीं आती है, ताले सिंधी है उर्दू है
1: समझ में नहीं आती। माशाल्लाह उर्दू तो आप बहुत अच्छी बोल लेते हैं।
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो हमारे पास कुछ बेटी दोस्त है होगी। हाँ जी
0: हाँ, मेरा भाई है जहीरम जतोई और निमला जतोई बुचाद जतोई बागो जतोई और बुचाद जतोई और शेरमन जतोई जाद जतोई और रिजवान जतोई बाकी जेके बुधन था वफा अब्दुल वहीद जतोई बारह सजे सदक सलाम।
1: ओके
0: मास्टर गुजरे जो बाजी
1: ओके।

ओके जी, नेक्स्ट कॉलर लेते हैं, चेक करेंगे कॉलर कहाँ से. हेलो. ओके जी, हेलो हेलो हेलो, कोई है? कोई नहीं है. ओके, अल्लाह हाफिज. 03000113488 जिसके ऊपर कॉल कर रहे हैं आप लोग. सो कॉल कीजिए और सुनाइए एक अच्छा सा गाना. और नेक्स्ट कॉलर, हेलो. ओके जी, नेक्स्ट लेंगे कॉलर. और साथ में मेरे ख्याल से हम एक गाना प्ले कर लेते हैं और गाने के साथ हम जाते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जाने. स्टे ट्यून्ड.

0: पाकिस्तान।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एटमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त, रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिला, आसिम हुसैन आराई, 0307359210।
0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ, आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार, फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
2: अपना शहर, अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

0: मुझे ये बताइएगा कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं जिला सांगर से बात कर रहा हूँ।
0: ओके ठीक है, गाना सुनाएंगे कोई हीरो वाला?
1: जी
0: हीरो वाला कोई गाना सुनाएंगे हमें?
1: नहीं अभी मैं गाना तो नहीं सुनाना चाहता, लेकिन ऐसे ही मैंने आपके प्रोग्राम में कॉल किए और शरीक हो रहा हूँ। शामिल जी जी
0: चले जबरदस्त प्रोग्राम सुनते हैं।
1: और कैसे हो रुखसार, ठीक हो आप?
0: जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गाना आपको गाना नहीं आता तो आप हीरो कैसे हुए? ये आपका अच्छा। वाकई आपका नाम है या फिर वैसे ही आपने रखा हुआ शो किया?
1: नहीं नहीं मेरा नाम हीरा हीरो है।
0: अच्छा नाम ही हीरो है, चले ठीक है।
1: तो मुझे आते हैं लेकिन अभी सुना नहीं सकता मैं।
0: अभी सुना नहीं सकते, चले जबरदस्त, बड़ी अच्छी हीरो
1: है। आपका शो बहुत प्रोग्राम अच्छा चल रहा है, हम भी सुन रहे हैं मटियारी चैनल पे। और जी जी सारे सुनने वालों को हमारे तरफ से बहुत अस्सलाम वालेकुम।
0: ओके अल्लाह हाफिज, थैंक यू। 03000113488 जिसके ऊपर आप लोग कॉल्स कर रहे हैं, सेगमेंट है हमारा सुर लगाओ गाना सुनाओ। और अब से ठीक 12 बजे के बाद हमारा सेगमेंट होगा हरा भरा पाकिस्तान। मैं कहने वाली थी बोलो तो माने, लेकिन वो थोड़ा सा आगे चला जाएगा और 12 बजे के बाद हम कर रहे होंगे हरा भरा पाकिस्तान। अच्छा नेक्स्ट कॉलर, हेलो वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
1: हाफिज सावल बात कर रहा हूँ मोरो से, बजट पर क्या है, ठीक हो?
0: जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाफिज सावल भाई जल्दी से अच्छा सा गाना।
1: दिल ने जाना दे अल्लाह मुझे
0: आवाज चली गई आपकी, हेलो
1: यार जी कारत पे दिल जाना।
0: ओके किसी को डेडिकेट करना है? चलिए जी थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हम प्ले करने जा रहे हैं जी गाना और हाफिज भाई का गाना हम ब्रेक के बाद वापस आकर प्ले करेंगे। हमारे पास मौजूद है बिलाल सईद की आवाज में खूबसूरत सॉन्ग, इसको सुनेंगे इंजॉय करेंगे और इसी के साथ हम जाएंगे न्यूज ब्रेक फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक, दोनों के बाद वापस आएंगे। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है फ्रॉम योर फेवरेट रेडियो स्टेशन जी एफ एम रेडियो नेटवर्क सिंध की आवाज।

पाकिस्तान हिकु भेरो ॿीहर अमेरिका ऐं ईरान में शुरू थियल छिकताण ते गणती ज़ाहिर करे छॾी। धुरियुनि खां सहप ऐं सबर जो मुज़ाहिरो करण जो मुतालबो। मसलो ॻाल्हियुनि ज़रिए हल करण ते ज़ोर भरियो। परॾेही तर्जुमान ताहिर हुसैन चयो आहे त ख़िते जी मौजूदा सूरत हाल ते नज़र आहे। पाकिस्तान मसले जे हल लाइ ॻाल्हियुनि ते यकीन रखे थो। धुरियूं सूरत हाल ते सबर ऐं सहप जो मुज़ाहिरो कनि। तकरार कंहिंजे मुफ़ाद में नाहे। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त नामे ते अमल जारी रहणु घुर्जे। अमेरिका ऐं ईरान जा हिक ॿिए ते हमला जारी। अमेरिकी फ़ौज जा ईरान जे मुख़्तलिफ़ शहरनि ते फिज़ाई हमला। ईरानी शहर सेननान में हवाई अॾे खे बि निशानो बणायो वियो। सेनेट काम मूजिबि अमेरिकी फ़ौज आबना हरमुज में ख़तरो बणजंदड़ ईरानी सलाहतनि खे निशानो बणायो आहे। ईरान जा बि ख़िते में मौजूद अमेरिकी अॾनि ते ड्रोन ऐं मिज़ाइल हमला। ईरानी फ़ौज अर्दन, बहरीन ऐं कुवैत में मौजूद अमेरिकी फिज़ाई अॾनि खे निशानो बणायो। अर्दन 8 ईरानी मिज़ाइल फिज़ा में तबाह करण जी तसदीक करे छॾी। आबना हरमुज भरिसां ईरानी ॿेटनि ते अमेरिकी फ़ौज मोकिलण जो इम्कान। अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल जी रिपोर्ट मूजिबि आला सतही इजलास में सदर ट्रंप खे सिफारती कोशिशनि सां गॾु ईरान में ज़मीनी फ़ौज मोकिलण बाबति ब्रीफिंग ॾिनी वई आहे। ब्रीफिंग में सदर ट्रंप खे ईरानी ॿेटनि ते कब्ज़ो करण समेत शदीद फ़ौजी कार्रवाइयुनि बाबति बि ब्रीफिंग ॾिनी वई आहे। ज़मीनी फ़ौज मोकिलण बाबति हतमी फ़ैसिलो सदर ट्रंप कंदो। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह पारां कणक ज़खीरो ऐं अटो महांगो कंदड़नि ख़िलाफ़ क्रेक डाउन जी हिदायत। सैद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि ख़ुराक खाते बाबति इजलास।

0: खाते पारां कणक जी खोट पूरी करण लाइ पास्को खां वधीक कणक खरीद करण जी तजवीज़। वॾे वज़ीर चयो त ग़िज़ाई खोट पूरी करण लाइ हर मुमकिन क़दम खणंदासीं। सिंध में पाणीअ जे खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि सरापा एहतजाज। मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा ऐं धरणा। नंदू में हारे नए आबादगारनि प्रेस क्लब अॻियां भुख हड़ताल कई। ठिकराटो में महर माइनर जे आबादगारनि पाणी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। अठहठ मोरीअ जे आबादगारनि जाम लगारी शाख में पाणी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। पोछड़ ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो। चोहड़ जमाली वेझो ॿिनि धुरियुनि में मामूली ॻाल्हि तां झेड़ो। हिकु ॼणो क़तल। ॻोठ गुल मोहम्मद छिरेजो में छिरेजा बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो थियो। जवाबदारम गुलाम नबी खे लतूं मुकूं हणी क़तल कयो। हिकु ॼणे जे क़तल बाद धुरियुनि में छिकताण वधी वई। सांगड़ में पुलिस लाक में फोत थियल बे ISP जी डिवाइस होल्डर जे वारसनि जो लाश रखी धरणो। पुलिस ते अब्दुल्ला लांडर खे तशदुद करण मारण जो इल्ज़ाम। ज़िम्मेवार अहलकारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो। पुलिस चयो आहे त अब्दुल्ला लांडर दिल बीहण सबब फोत थियो आहे।
1: Alcateia, se liga só nesse short 2 em 1.
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग। कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग।

0: अच्छी नजरिए, जिसमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी, इरशाद ऑटोस, हालानी रोड, मेहरापुर, राब्ते दे लाए 03201800003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Diya Josho, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल, गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।
4: 12 बजे के बाद दैट इज हरा भरा पाकिस्तान, जिसको सपोर्ट करता है हैप्पीनेस फाउंडेशन ट्रस्ट पाकिस्तान, जिसके तामुन से आप तक ये सेगमेंट पहुंचाया जा रहा होता है। और इस सेगमेंट में अलग अलग हमारे साथ डिफरेंट गेस्ट मौजूद होते हैं, जो कि हमें स्पेसिफिक टॉपिक्स के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें बताते हैं जो कि हम बिल्कुल भी नहीं जानते। ठीक है जी, तो जितने भी सुनने वाले हैं डेफिनेटली आज भी हमें बहुत गौर और शौक से सुन रहे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक और जो हमारे गेस्ट हैं, तो सबसे पहले जो हमारे गेस्ट हैं आज के, वो हैं मिस्टर तारिक तनवीर साहब, जो कि सीईओ हैं एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के, इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। सो इनको हम कहेंगे खुश आमदीद और अस्सलामु अलैकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम
4: जी। तारिक तनवीर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं?
5: मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप सुनाएं कैसी हैं आप? ठीक हैं आप
4: जी? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो वेरी वार्म वेलकम टू यू, आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे नेटवर्क पे, हमारे सेगमेंट में, हमारे सुनने वालों के लिए। थैंक यू सो मच।
5: थैंक यू।
4: ओके जी, अच्छा आज हम स्पेशली बात कर रहे हैं सस्टेनेबल टूरिज्म और रूरल डेवलपमेंट के बारे में। तो तारिक तनवीर साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताइए, सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताइए कि आपने एग्री टूरिज्म के शुबे में काम किया है, तो आपने इसका आगाज कैसे किया और इस सफर ने पाकिस्तान के जितने भी दही इलाके हैं उनके लिए क्या नई राहें खोली हैं?
5: थैंक यू वेरी मच रुखसान, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको बताऊं, मैं एक किसान का बेटा हूं और जब हम किसान को देखते हैं, हमारे पाकिस्तान को बने हुए 76-78 साल हो गए, लेकिन आज भी देखें पाकिस्तान में हमारा जो किसान है वो इंतहाई बुरे हालात में है। वो अपने फार्म को सस्टेनेबल नहीं कर पा रहा है, अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में सूरत हाल ये बन चुकी है कि आज घाटे की एग्रीकल्चर करके किसान का जो बच्चा है वो भी किसान नहीं बनना चाह रहा। तो ऐसे में बहुत जरूरत थी कि हम कोई ऐसे इनिशिएटिव लें, कोई ऐसे काम करें जिससे हम किसान को अपने पैरों पर खड़ा होने में उसकी मदद कर सकें, उसकी किसान के जो फार्म की इनकम को सस्टेनेबल कर सकें। तो बीइंग ए किसान का एक जो बेटा है मेरे लिए एक चैलेंज था। तो सबसे पहले चूंकि हमारे पास थोड़ी सी आबाई जमीन थी, उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया, एक एग्री टूरिज्म का एक फार्म हमने बनाया। तो उससे इतना हौसला अफजा हो, इतना परफेक्ट उसका नतीजा निकला, तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने बाकी किसानों को भी इस आइडिया की जो तबलीग करूंगा, उनको भी इस आइडिया के बारे में बताऊंगा ताकि वो भी अपने पैरों पे खड़ा हो सके। तो इस तरह ये हमने कोई 30 साल पहले मैंने ये सफर का आगाज किया और आज पाकिस्तान में गिलगित से लेकर कराची तक हजारों किसान जो है इस आइडिया से जुड़े हुए हैं और इस एग्री टूरिज्म के आइडिया से वो बेहतरीन पैसे भी कमा रहे हैं।
4: अच्छा तारिक तनवीर साहब, आप हमें ये बताइए कि आपके ख्याल में सस्टेनेबल टूरिज्म क्या है और ये पाकिस्तान की जितनी भी रूरल डेवलपमेंट है इसमें किस तरीके से अहम किरदार अदा कर सकती है?
5: देखिए, अभी हमने देखा कि जब भी हम किसी भी इलाके को टूरिज्म के तौर पे यूज करते हैं तो वहाँ पे एक होटलों की एक मशरूम ग्रोथ शुरू हो जाती है। लोग वहाँ पे आके इस तरह एंटरप्रेन्योर्स वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं कि वहाँ की हर चीज को वो पोल्यूटेड कर देते हैं, उसको हम कचरे का घर बना के रख देते हैं। अभी भी देखिए, ये जो सस्टेनेबल टूरिज्म का जो एक जो मतलब ही होता है कि जो हमारी रीजनरेटिव टूरिज्म, जिस तरह हमारे फोर फादर ट्रेवल करते थे, जिस तरह वो चीजों को देखते थे जहाँ पे वो रहते थे, तो जो एग्रीकल्चर के जो टूरिज्म है इसमें जब हम फार्म स्टे की बात करते हैं, फार्मर की टूरिज्म की बात करते हैं, रूरल टूरिज्म की बात करते हैं, तो ये वो टूरिज्म है जिससे एक यूनिफॉर्म किस्म जो है इनकम जनरेट या यूनिफॉर्म किस्म की जो है टूरिस्ट वहाँ पे आता है, जिससे कि हम किसी तरह की माहौलियाती आलूदगी और बाकी किसी भी तरह के जो प्रॉब्लम है उनको जो है ना मिनिमाइज, बल्कि वो बिल्कुल होते ही नहीं उस तरह के। तो ये किसी भी इलाके की जो जिस तरह हम रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, देहाती जो है ना इस तरह की सेटअप में लोगों का आना वहाँ पे आके ठहरना, ये ना सिर्फ उस इलाके की जो है ना डेवलपमेंट में मददगार साबित होता है, बल्कि इससे जो बहुत सा प्रेशर जो हम शुमाली इलाका जहाँ पे हमारा पड़ जाता है वो भी काफी हद तक जो है वो कम हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में हम अपने गांव हमारे चूंकि बहुत खूबसूरत हैं और गांव के कोई खाना भी एक बड़ा खूबसूरत है, तो हम अब रूरल डेवलपमेंट के लिए जो सबसे बड़ा टूर है वो रूरल टूरिज्म है और एग्री टूरिज्म है, और यही दोनों ऐसे आइडिया हैं जो एक सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रेजेंट करते हैं।
4: जी तारिक तनवीर साहब, अब हम थोड़ा सा इस तरफ आते हैं क्योंकि बहुत सारे इस वक्त हमें हमारे किसान भाई भी सुन रहे हैं, बहुत सारे किसान भी हमें सुन रहे होते हैं, तो आप हमें ये बताइए कि जो एग्री टूरिज्म है वो किसानों की आमदनी बढ़ाने में किस तरीके से मदद कर सकता है, क्योंकि फार्म ब्रांडिंग, वैल्यू एडिशन, फार्म विजिट्स और बराह रास्त मार्केटिंग से किसानों को आप हमें बताइए कि क्या क्या फवायद हासिल हो सकते हैं।
5: जैसे एग्री टूरिज्म जो है ये बेसिकली किसान को जो है ना नए आइडियाज, नई सोच देता है। जिस तरह आप देखें, हम शहरों में देखते हैं कि एक चाय का छोटा सा जो ढाबा बना होता है या पान का एक छोटी सी शॉप होती है, उसका भी एक नाम होता है, उसका एक ब्रांड होता है, उसका नाम रखा जाता है, लोग उसको उस नाम से ही जानते हैं। तो जो किसान है उसने अपने फार्म का कभी भी नाम नहीं रखा, उसको नहीं पता कि मैंने अपने फार्म को ब्रांड करना है, मैंने अपने फार्म का नाम रखना है और मेरे अपने फार्म के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ इस पे लिखा हुआ कि मैं ये चीजें उगाता हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये नंबर है, इसको अगर कोई ये चीज चाहिए तो मेरे इस नंबर पे रابطہ कर सकता है। तो ये किसी भी फार्मर ने नहीं किया। तो एग्री टूरिज्म में सबसे पहला जो हम काम करते हैं वो फार्मर की ब्रांडिंग करते हैं और फार्म की ब्रांडिंग करते हैं, यानी फार्म का एक नाम होता है और फार्मर जो है अपने नाम की पहचान के साथ अपनी चीजें जो है ना वो बेचता है। और सेकेंडली हम उसको वैल्यू एडिशन पे जो है उसको ट्रेनिंग देते हैं, जो उसको प्रोग्राम देते हैं कि आपने जो रॉ मटेरियल में अगर जब देखिए जब भी किसान की प्रोड्यूस मार्केट में आती है तो उस टाइम में चीजें इतनी चीप होती हैं, इतनी वो सस्ती होती हैं, किसान को उसका बेहतर मुआवजा नहीं मिलता। तो ऐसे में वो अगर वो वैल्यू एडिशन करता है, अपनी चीजों को बेहतर ब्रांडिंग करता है, उसकी बेहतर पैकेजिंग करता है, उससे कोई प्रोडक्ट बना के बेचता है, तो उससे वो कई मल्टी टाइम ज्यादा पैसे जो है ना वो कमा सकता है। जैसे अगर मैं मिसाल दूं कि अगर हमारे पास किसी टाइम में कोई सब्जी ऐसी, जैसे आप गोभी की बात कर लेते हैं, अगर हम पुली की बात कर लेते हैं, वो जब वो 2-4-5-10 रुपए पर केजी तक सेल हो रही होती है, फार्मर की मैं आपको बात कर रहा हूँ, तो ऐसे में अगर जिस तरह हमारी दादियां परदादियां घरों में अचार बना लेती थी, जैम बनाती थी, मुख्तलिफ इस तरह के वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट बनाती थी, तो वही काम आज किसान की जो बीवी है, जो किसान की बेटी है, उसने भी यही काम करना है कि अपने वालद अपने शौहर की उगाई हुई जो प्रोडक्ट है उसको उसने वैल्यू एडिशन में लेके जाना है और उसका एक प्रोडक्ट बनानी है, उसके ऊपर अपना नाम लिखना है, फिर शहर के लोगों को बेचना है। आज भी उस तरह का अचार जो है, मैं आपको बताऊं कि कोई भी जो है ना इंडस्ट्री नहीं बना पाती। तो ये जो वैल्यू एडिशन है ये हमारी सेकंड जो है वो प्रायोरिटी होती है। और इसके बाद हम फार्मर को सिखाते हैं कि आपने अपने फार्म के ऊपर लोगों को बनाना है, वहां पे उनको एंटरटेन थोड़ी सी दिखानी है और उनको टेंशन फ्री टाइम गुजारने का मौका फराहम करना है। ये वो 2-3 चीजें हैं जिसको अडॉप्ट करके हमारा जो किसान है वो अपने फार्म की इनकम जो है वो बेहतर कर रहा है।
4: ओके जी तारिक तनवीर साहब, आप हमें ये बताइए कि जितने भी अगर मतलब इंटरनेशनल टूरिस्ट अगर आते हैं टूरिज्म के लिए और जितने भी हमारे किसान भाई हैं, चूंकि वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो अगर कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट आता है और वो कोई मतलब के किसानों से अगर रابطہ करना चाहे तो कोई सोशल मीडिया पेजेस या फिर कुछ इस तरीके से कोई मतलब जिनसे वो किसानों को रीच आउट कर सके, तो इस तरीके की कोई चीज़ अगर आप बताना चाहें।
5: देखिए बिल्कुल, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पाकिस्तान एक ब्रिज का काम करती है, हम एक पुल का किरदार अदा करते हैं। अभी आप अगर पूरी दुनिया में जाते हैं, अगर आप स्ट्रॉबेरी पिकिंग पे आप फार्म पे जा रहे हैं, आप एप्पल पिकिंग पे जा रहे हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ एक्टिविटीज के लिए फार्म के ऊपर आप जाते हैं, तो पाकिस्तान में भी हमारे पास सैकड़ों के साथ ऐसे फार्म अब डेवलप हो चुके हैं। हमारे किसान जो है वो अपनी प्रोडक्ट बना के बैठे हैं, मुख्तलिफ हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना के किसानों को इसमें कर रहे। तो जो हमारा एग्रीटूरिज्म का जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये ब्रिज का काम करता है। हमारी साइड पे जितने भी किसान हैं उन्होंने अपने अपने सोशल मीडिया पेजेस बनाए हुए हैं, और जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं वो हम डिफरेंट फेस्टिवल्स कराते हैं, डिफरेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, डिफरेंट वर्कशॉप कराते हैं। हमारे एक साल में तकरीबन 100 फेस्टिवल जो होते हैं, कभी आप बनाना फेस्टिवल कर रहे हैं, कभी मैंगो फेस्टिवल कर रहे हैं, कभी ओलम मेला हो रहा है, कभी जतूर मेला होता है, कभी गुड़ फेस्टिवल हो रहा है। तो ये सारे मेले जो होते हैं, ये किसान वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट भी प्रेजेंट करते हैं, जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं हमारे इन मेलों के अंदर आते हैं, फिर उनकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी जो है ना वो डेवलप होती है, और उनके फार्म को भी विजिट करते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, तो हमारे साथ किसान भी जुड़ते हैं और आम जो टूरिस्ट जो एग्री टूरिज्म में जाना चाहता है वो भी हमारे साथ जुड़ते हैं, तो हम दोनों को आपस में जो है रब्ता करा देते हैं दोनों को आपस।
4: ओके जी, अच्छा अगर हम जनरेशन की बात करें और जितनी भी हमारी खवातीन हैं उनकी बात करें, तो खवातीन और नौजवान एग्री टूरिज्म में किस तरह अपना किरदार अदा कर सकते हैं, एक तो चीज़ आप हमें ये बताइए, और जितनी भी हमारी देही खवातीन हैं जो होम फूड्स बनाती हैं, दस्तकारी करती हैं, नर्सरी करती हैं, फूड प्रोसेसिंग करती हैं, और जितने भी नौजवान हैं, जी जी
5: जी बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने ये शुरू की है, इसको मैं समझता हूँ कि किसान जो है वो शायद उस तरह जितनी हम बातें करते हैं वो उस तरह इसमें कोलैबोरेट नहीं कर पाएगा, या उस तरह उसको अंडरस्टैंड करना उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ग्रो करना एक काम है और उसको प्रोसेस करके मंडी तक लेके जाना या किसानों घरों तक डायरेक्ट जो लोगों को बेचना ये दूसरी बात होती है। तो मेरा ख्याल है, हेलो आवाज आ रही है?
4: जी जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है,
5: मेरी आवाज सुन रहे हैं आप लोग?
4: बिल्कुल बिल्कुल, कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज।
5: चलो बेहतरीन। अच्छा मैं यही कह रहा था कि जो हमारे पढ़ लिख गए हैं जो यूनिवर्सिटियों में उन्होंने डिग्रियां ले ली हुई हैं, तो वो जब वापस जाते हैं गांव में तो उनको चाहिए जाके कि वो अपने पेरेंट्स के लिए एक स्पोर्ट का काम करें, और वो जो बच्चियां हैं या खवातीन हैं वो घर में जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है जिसको हम घरेलू इंडस्ट्री भी कह सकते हैं, जिसको हम कॉटेज इंडस्ट्री भी कह सकते हैं, वो छोटी छोटी चीजें जो है ना इस तरह की बनाने की पैकिंग की इंडस्ट्री बनाए, और ई कॉमर्स जो है इसके जरिए आजकल देखिए जो मोबाइल है आजकल हर बंदे के हाथ में है, सोशल मीडिया हर बंदे के हाथ में है, तो हमारे बच्चे उसको बहुत हमारी यूथ जो है उसको समझती है, तो अपनी बाप की अपने भाई की और अपने शौहर की पैदा की हुई चीजों को उसको बेहतरीन तरीके से ब्रांडिंग करके उसको ई कॉमर्स के जरिए पूरी पाकिस्तान में उसको बेचें, तो शहर के लोग भी आज अच्छा चीजें जो है ना वो डायरेक्टली, जैसे अभी मैं मैंगो की बात करूं, इस तरह हमारे देश भर किसानों ने ऑनलाइन मैंगो बेचना शुरू किया, जामुन ऑनलाइन बेचने शुरू की, ऑलिव के प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचने शुरू किए, तो ये नौजवानों का काम था जो कि आईटी में भी एक्सपर्ट थे और उनका तलक भी जो है ना एग्रीकल्चर से था, तो उन्होंने ये मैं समझता हूँ किसान के जो ये नौजवान बच्चे हैं और उनकी खवातीन है उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो घर में बैठ के अपनी उगाई हुई चीजों को, जैसे मल्टीग्रेन आटा है, आज भी शहर में जो आटा मिलता है वो सूजी और उसमें से निकली होती है, उसमें से जो हमारा मैदा निकला होता है वो इतना कोई सेहतमंद आटा नहीं होता, तो अगर किसान के बच्चे जो है उसको एक अच्छा आटा बनाए, होल वेट आटा उसको कह सकते हैं, या पत्थर की चक्की का आटा कह सकते हैं, या मल्टीग्रेन आटे का नाम दे के उसको 5 किलो की अच्छी पैकिंग के साथ पूरे पाकिस्तान में उसको बेच सकते हैं, तो ये खवातीन घर में बैठ के उसको वैल्यूडेशन करे और जो नौजवान है उसको एक अच्छी ब्रांडिंग के साथ बेचे, और फिर जो शहर के टूरिस्ट है वो जब फार्म पे आते हैं तो ये जो नौजवान है ये उनको अपने साथ खेतों की सैर करें, टूर गाइडिंग करें, तो वहां पे नाइट स्टे के लिए डिफरेंट अरेंजमेंट्स करें, तो इस तरह जब शहरों से लोग गांव में आते हैं पैसा खर्च करके जाते हैं तो गांव की सतह पर जो प्रॉस्पेरिटी आती है इससे खुशहाली आती है, क्योंकि इससे डायरेक्ट पैसा गांव में इंजेक्ट होता है और इसका बेनिफिशियरी जो होता है वो फार्मर होता है, उसके बच्चे होते हैं और उसके घर वाले जो बीवी बच्चे सब तक वो इक्वली उसकी प्रॉस्पेरिटी के जो साथ जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि खवातीन को इंपावर करने के लिए और यूथ को नए आइडियाज देने के लिए बेहतरीन इस टाइम मौका है कि हम एग्री टूरिज्म के मॉडल को अपनाएं।
4: ओके जी, तारिक तनवीर साहब, टाइम भी बहुत लिमिटेड है हमारे पास, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आखिर में آپ پاکستان کے نوجوانوں, کسانوں اور خواتین مطلب کہ ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے, کس طریقے سے وہ سرمایہ کاروں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ آئندہ 5 سے 10 سال کے لیے آپ کا ویژن کیا ہے, اس پہ بھی تھوڑی سی نظر ڈالیے گا.
5: دیکھیے ایک چیز, اب ہماری ساری باتیں, خیر ابھی چونکہ ٹائم بڑا تھوڑا ہے, آپ ہماری جو ایگری ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن پاکستان کی آپ اناؤنس کیجئے گا, ہماری جو سوشل میڈیا پیج بھی ہے, فیس بک پیج ہے, وہاں پہ ہماری پوسٹیں آتی رہتی ہیں, اس میں اپرچونٹیز پہ بات ہوتی ہے, اس پہ مسائل پہ بات ہوتی ہے, پھر وسائل پہ بات ہوتی ہے, اس پہ ہم پالیسی میکنگ پہ بات کرتے ہیں, اس پہ کس طرح آئیڈیاز کے اوپر بات ہوتی ہے, تو اس کو پیج کو وزٹ کیا جا سکتا ہے. تو مختصر میں یہی کہوں گا کہ جو ہمارا زراعت کا جو مستقبل ہے وہ ویلیو ایڈیشن ہے. اور چونکہ اب ہم نے زراعت میں چیزیں اگا کے دیکھ لیں کہ اب ہمارا جو آلو پچھلے سال دیکھے وہ ہم نے وہ زیادہ پیدا کیا تو وہ بھی رل گیا, کسان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اسی طرح پیاز ہے, باقی چیزیں ہیں, 2 سال پہلے ہماری گندم کے ساتھ بھی یہی ہوا. تو میرا خیال ہے کہ آنے والا جو فیوچر 10-15-20 سالوں کا ہے وہ ویلیو ایڈیشن ہے, کہ ہم نے پروسیس کر کے ہم نے اپنی چیزوں کو پوسٹ ہارویسٹ لاسز کو کم کرنے کے لیے ویلیو ایڈیشن کرنا بہت ضروری ہے. تو میرا پیغام بھی یہی ہے, پالیسی میکنگ کے لیے بھی یہی ہے, اور اپرچونٹی بھی یہی ہے مستقبل کی, کہ اب ویلیو ایڈیشن کی ایگریکلچر کا جو مستقبل ہے ہمارے نوجوانوں کو ویلیو ایڈیشن کی ایگریکلچر پہ سوچنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا کہ ہمارے جو خواتین ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہے, وہ آگے آئے اور اپنے اپنے اچھے زبردست قسم کے اپنے ایگریکلچر برانڈ بنائیں, پروڈکٹ کی برانڈ بنائیں, اور اس کو موبائل کے ذریعے, اس سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو, اس پاور کو استعمال کرتے اس کو بیچیں. اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے جو ڈفرنٹ جہاں فیسٹیول کرتے ہیں کنیکٹیویٹیز میں, ایگریکلچر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ لوگوں کو ٹریننگ دے کہ کس طرح آپ نے اپنی پروڈیوس جو ہے نا وہ بیچنی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس تمام آئیڈیاز کو ہم اگر اڈاپٹ کر لیں تو ہمارا کسان جو ہے وہ بھی خوشحال ہو جائے گا, اور رورل جو ڈیولپمنٹ ہے جو ہماری سب سے بڑا گول ہے کہ ہم نے دیہاتوں کی سطح پر ہم نے پراسپیرٹی لے کے آنی ہے, تو وہ بھی گول پورا ہوگا. چونکہ کسان ہماری پاکستان کا 70% لوگ ہیں, اگر یہ 70% لوگوں کو ہم نے خوشحال کر لیا تو پاکستان جو ہے نا وہ بھی خوشحال ہو جائے گا.
4: بالکل جی, ایسے ہی ہے, بہت اچھا پیغام آپ نے دیا طارق تنویر صاحب. اچھا, جن پیجز کی آپ بات کر رہے ہیں اگر ان پیجز کا نام لے کے آپ بتا دیں گے سننے والوں کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی ریچ آؤٹ کرنے کے لیے.
5: اس میں دیکھیں, ایک تو اسی نام سے ایگری ٹوریزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن آف پاکستان, یہ ایک سوشل میڈیا کا پیج ہے, اس پہ ابھی تک ہماری کوئی میری کو 50,000 جو ہے نا اس کے اوپر میری پوسٹیں پڑی ہوئی ہیں. اور اس میں اگر آپ دیکھیں ہمارے جو فیسٹیولز ہوتے ہیں پورے سال میں, کیلنڈر بنا ہوتا ہے کہ جو کون سے علاقے میں کون سا ایونٹ ہونا ہے, وہ بھی سارا اسی کے اوپر پڑا ہوتا ہے. تو ایگری ٹوریزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن پاکستان یہ ہماری سوشل میڈیا پیج ہے, اور www.atdcp.com یہ ہماری ویب سائٹ ہے. اس کے اوپر بے شمار کسانوں نے اپنے یہ جو ہے نا اپنے اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں, اور لینے والے اور دینے والے کو جو بریج کا کام کرتے ہیں اسی سائٹ کے ذریعے کرتے ہیں, اس سے بھی وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں.
4: اوکے جی, تھینک یو سو مچ مسٹر طارق تنویر صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہے, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس ان دی شو, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اوکے جی, اللہ حافظ, تھینک یو. اور یہ تھا آج کا سیگمنٹ ہرا بھرا پاکستان, جس کو سپورٹ کرتا ہے ایچ ایف ٹی پاکستان, ہیپینس فاؤنڈیشن ٹرسٹ پاکستان. اور آئی ہوپ جو کہ جی آج کا سیگمنٹ بھی آپ کو بہت پسند آیا ہوگا, اچھا لگا ہوگا. اسی کے ساتھ سیگمنٹ کا جو ٹائم ہے وہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے. ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے فرام یور فیوریٹ ریڈیو اسٹیشن جی ایف ایم ریڈیو نیٹورک, سندھ کی آواز.
2: خوشخبری, کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے, شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج, ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار, کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے, نئے بالوں کی نشوونما میں مدد دے, بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے. گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک, نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد, تھری روڈ مہراب پر, 03003385569.
6: جہاں امید کے دیے جلتے ہیں, रोशनी का काफिला, मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद रابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، 03000002734، نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور، 03013865453۔
7: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم، اس میں موجود وائٹمن ای بیٹس اور جدید مائکرو بیٹس فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار، صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو۔ دی سکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر دن کا شو۔
8: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
9: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
8: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
9: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372
10: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूह वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

योगी जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं मुझे कहते हैं आज रुक साए, आपको मेरा साथ पूरे पूरे एक बजे तक का. और आप लोग मैसेजेस और कमेंट्स और कॉल्स कर रहे हैं, तो बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस जिनकी तरफ हम मूव कर रहे हैं. हमें बहुत सारे कमेंट रिसीव हुए हैं हाले सुल्तान के. हाले सुल्तान लिखती हैं, हाय स्वीट आरजे, अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम हाले सुल्तान. और हाले सुल्तान लिखती हैं कि हाय स्वीट आरजे, वेलकम टू द शो, वी आर आल्सो विद यू. थैंक यू हाले सुल्तान. You have come so sweet, felt very good after listening to this after many days. Thank you, Hale Sultan.

ठीक है, रोज सुनेंगी तो रोज अच्छा लगेगा, कभी कभी सुनेंगी तो कभी कभी अच्छा लगेगा. अब्दुल रजाक कहते हैं कि सॉन्ग सुनाओ, सॉन्ग सुनाएंगे. गुलाम मोहम्मद मरी बलोच हमें सुन रहे हैं, कहते हैं कि आपको सुन रहे हैं, हमारी फैमिली बहुत शौक से सुनती है और आपका अच्छा शो है मीरपुर खास. अच्छा, मैं इसको पढ़ने लगी थी, हमारी फैमिली बहुत अच्छी है. अच्छा, ओके. 03000113488 इसके ऊपर कॉल कर रहे हैं आप लोग. अगे आपकी पूरी फैमिली को खुशामदीद कहेंगे. अगेन आपका कमेंट रिसीवर उसार इज योर शो इज वेरी गुड शो. थैंक यू.

ओके जी, इसी के साथ एक और सॉन्ग प्ले करने जा रहे हैं एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल और इसको सुनेंगे, एंजॉय करेंगे. और गाना है जी आसिम अज़र की आवाज में, मिलके सुनते हैं, एंजॉय करते हैं.

0: हाशिम खान रिंद से, शायर गाजी खान रिंद, रिजवान अली रिंद, फैजान अली रिंद हमें सुन रहे हैं और यही मैसेज आपने दो बार सेंड कर दिया है. कॉलर ही मेरे से लाइन पे चेक करते हैं जी. हेलो हेलो. ओके जी, कॉल ड्रॉप हो गई है. आगे नेक्स्ट कॉलर. हेलो हेलो. ओके जी, आवाज नहीं आ रही है. हेलो. ओके जी, हेलो. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम.
0: सर दर्द कैसी हो?
1: बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे?
0: जी मैं बहुत अच्छी हूँ. सर दर्द, मुझे बताओ कि लास्ट लकी कॉलर हो, आज की अच्छी बात क्या है?
1: जी आज की अच्छी बात दूसरों को उतनी अहमियत देते हैं, खुद को अहमियत देते हैं. खुद से ज्यादा किसको अहमियत देना बाद में पछतावे के सबब बनती है.
0: वेरी वेल सेड, वेरी नाइस. कौन सिखा रहा है तुम्हें ये बातें? बताओ बताओ.
1: देख लो.
0: खुद ही सीखी है, एक्सपीरियंस की है. चले बहुत जबरदस्त. सरदर कुछ और कहना है?
1: आपकी 3 दिन छुट्टी ना ज्यादा है, 2 दिन छुट्टी कर लेते आप.
0: सॉरी क्या प्यार है?
1: मेरा आप 3 दिन छुट्टी करते हैं, 3 दिन तो बहुत ज्यादा है, वैसे 2 दिन छुट्टी कर लेते हैं ना.
0: देखिए
1: 2 दिन छुट्टी होती है आपकी.
0: हाँ सिर्फ 2 दिन छुट्टी होती है, देखें 2 दिन ही थी.
1: नहीं मैं कह रही 2 दिन छुट्टी होती, 3 दिन है आपकी.
0: अच्छा 3 दिन आती, 2 दिन छुट्टी होती.
1: हाँ.
0: वैसे मैं 4 दिन आती हूँ.
1: लेकिन 3 दिन छुट्टी ज्यादा है, 2 दिन आप छुट्टी कर लेते.
0: 3 दिन छुट्टी ज्यादा है. अच्छा मतलब ज्यादा आया करूं छुट्टी कम किया करूं.
1: हाँ बिल्कुल
0: ये कहना चाहते हैं. अच्छा अच्छा चले ठीक है फिर. देखते हैं बोरिया बिस्तर लाते हैं अपना यहीं. ठीक है. ओके ओके अल्लाह हाफिज जी. सर दर्द की आवाज गुम हो गई है, गुम. 0300-01-188. अच्छा एक और कॉलर लेंगे जी लाइन पे और चेक करेंगे लास्ट लकी कॉलर कौन होगा हमारे साथ.

एक ही गाना चली जा रहा है, चेंज करेंगे और साथ में हम लेंगे फाइनली आपसे इजाजत. मेरी आपसे चर्चा होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मंडे को सेम टाइम सेम चैनल सेम शो द सेम आरजे. सुनना मत भूलिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. सो दिस इज मी आरजे रुखसार, साइंस आउट, टेक केयर, गुड बाय, अमानी खुदा, अल्लाह हाफिज़.

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: ईरान मुल्क इंफ्रास्ट्रक्चर ते अमेरिकी हमले की सूरत में खितान इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करण की धमकी दई छी। ईरानी फौज जो खातमुल नबिया हेडक्वार्टर जी तर्जुमान ईरानी फौज जो खातमुल नबिया हेड

अमेरिका ईरान में जमीनी फौज मोकलण ते गौर शुरू करे छड़ियो। अपना हर्मस भरसा ईरानी बेटन ते अमेरिकी फौजी मोकलण जो इम्कान। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट मूजिब आला सतह इजलास में सदर ट्रंप के सफारती कोशन से गड ईरान में जमीनी फौज मोकलण बाबत ब्रीफिंग डिनी वही है। ब्रीफिंग में सदर ट्रंप के ईरानी बेटन ते कब्जो करण समेत शदीद फौजी कार्रवाई बाबत भी ब्रीफिंग डिनी वही है। जमीनी फौज मोकलण बाबत हतमी फैसलो सदर ट्रंप कंदो।

0: वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह पारां कणक ज़खीरो ऐं अटो महांगो कंदड़नि ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जी हिदायत। सैद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि खुराक खाते बाबति इजलास। सूबे मां 6,10,000 मेट्रिक टन कणक गुम हुजण जी तस्दीक। अमलदारनि पारां गुम थियल कणक मां 1,72,000 मेट्रिक टन कणक हथ करण जी दावा। खुराक खाते पारां कणक जी खोट पूरी करण लाइ पास्को खां वधीक कणक ख़रीद करण जी तजवीज़। वॾे वज़ीर चयो त ग़िज़ाई खोट पूरी करण लाइ हर मुमकिन क़दम खणंदासीं।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद, मां अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307359210।
3: माशाला फौजी पाई फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहरापुर असा वट जगह जो डारियो जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ 4, 6, 9, 12 इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456।

0: ਸੰਬੰਧ 0-6-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-335-69।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब होयो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुजे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी।
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: ओके जी, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा सुंदर. उसी के साथ साथ आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तौर से. और जी आपकी सिद्रा आपके साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताते जाएंगे, अपने होने का एहसास दिलाएंगे. और इसी के साथ साथ आप हमारे साथ अगर मौजूद हैं तो आप कहाँ कहाँ से हमारे साथ हैं और कौन कौन से समाते हैं, ये हमारे साथ जरा आप शेयर करने वाले हैं. इसी के साथ साथ हम आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इनके बारे में भी तफसील से बताने वाले हैं. ओके जी, तो सब कुछ बताएंगे और बहुत सारी बातें हैं जो बताने वाली, लेकिन साथ साथ सबसे पहली जो बात है वो ये कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों से टॉपिक क्या पूछा जा रहा है उसकी जानिब आ जाते हैं. ओके जी, तो अगर आज के प्रोग्राम के सवाल की बात की जाए तो आज जो मेरा आप लोगों से टॉपिक होने वाला है प्रोग्राम के अंदर, तो वो कुछ इस तरह से होने वाला है जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, हम मूवीज में देखते हैं. मैंने रियल लाइफ में तो ऐसा कभी नहीं देखा कि किसी इंसान की जो ना किसी इंसान को मेमोरी लॉस हो गया हो, यानी कि उसकी याददाश्त चली गई हो, उसने सब कुछ भूल दिया, उसका मतलब जो भी उसके साथ हो वो सब कुछ भूल जा रहा हो. मैंने रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन हाँ मूवीज में हमने बहुत मार देखा. लेकिन ऐसा है कि अगर आप जो है ना, आपने कभी किसी इंसान को देखा है जिसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है, या फिर आपने भी मूवीज में देखा है, लेकिन सवाल जो है वो कुछ इसी से रिलेटेड होने वाला है आज के प्रोग्राम का, तो आप मुझे ये बताएं कि अगर मेमोरी लॉस हो जाने के बाद एक इंसान सब कुछ भूल जाता है, यानी कि वो सब कुछ भूल जाता है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता, तो आज आप मुझे जरा ये बताइए कि फिर वो अपनी लैंग्वेज कैसे जो है ना उसे याद रह जाती है, यानी कि बेसिकली देखा जाए तो वो तो अपनी लैंग्वेज भी भूल जाए ना, मतलब एक चीज नई से शुरू हो रही है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करे ना, फिर उसे अपनी लैंग्वेज क्यों याद रहती है, लैंग्वेज कैसे याद रह सकती है, ये आप जरा आज मुझे बताएंगे. तो जल्दी जल्दी से अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाएंगे, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाएंगे, टाइप करेंगे LRK सिंगल स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, पूरा मैसेज लिखेंगे और इसे सेंड कर देंगे 8821 पर. अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं, फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो LRKANA FM 88.8 हमारा पेज है. ओके जी, तो फेसबुक पेज को आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा जो है ना वो पेज मिल जाएगा, उसके ऊपर आप जैसे ही आते हैं तो आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाती है, जैसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे. ओके जी, चलिए जल्दी जल्दी से पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और मुझे बताइए आप हमारे साथ मौजूद हैं. और साथ साथ बताइए अगर किसी इंसान की ना मेमोरी लॉस हो जाने के बाद वो सब कुछ भूल जाता है, तो फिर उसे अपनी लैंग्वेज कैसे याद रहती है और क्यों याद रहती है, ये बताइए जरा मुझे. ओके जी, सो अगर आप भी हमारे साथ मौजूद हैं तो जल्दी जल्दी से अपने होने का एहसास दिलाइए, आप जिंदा है मुझे पता होना चाहिए. और इसी के साथ साथ अगर आप व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी आप हमारे साथ शेयर करेंगे, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होती है. और साथ ही साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं, चाहे वो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, तो उसके लिए आपने जो है ना वो डायल करना है 03-15-799-0595 3015-79-5595. ये नंबर उन लोगों के लिए है जो भाई ये कह रहे हैं कि बाजी हमारे एरिया में तो नहीं मिल रही व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स और हमारी एरिया में तो नहीं मिल रही डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट, तो आप जो है ना इस नंबर के ऊपर रابطہ कीजिए, आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो जल्दी से अवेलेबल कराइए और नंबर के ऊपर رابطہ करते रहिए. ओके जी, जल्दी से हमारी पोस्ट को भी लाइक और शेयर करते जाइए, दोस्तों को मेंशन कीजिए और उन्हें जरा पोस्ट शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि खूबसूरतियां आपको कैसे मिलने वाली है. आजकल देखा जाए तो हर कोई जो है ना वो परेशान है खूबसूरती को लेकर, लेकिन आपकी ये परेशानियां हम दूर कर देते हैं. तो बिल्कुल जी, मोहम्मद मीरन जकरानी भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं जेकब आवाज से, खुश आमदीद कहते हैं भाई जान को. सरफराज अली सोलंगी हमारे साथ मौजूद है, सरफराज सोलंगी आपको भी वेलकम करते हैं, दर्दे दिल आ चुकी हैं, हेलो, और कहते हैं चलो चंद आ गई, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम, स्वीटी को वेलकम करते हैं. और फहीम शेख कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, मदद खुश आयो, सफा चाक चंगा भला, जी जी सब कुछ आयो, चाक चंगा भला, ता बुधाए की आयो, कहते हैं जो गानो बुधाए जो भला, बिल्कुल ताकि गानो बुधराइना सी. और हिदायतुल्लाह अहमद आने कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो, मैं आज गया हूँ, मैं अच गया हूँ. ओके जी, बिल्कुल आज फ्री होकर, क्योंकि संडे है तो आज ये सॉन्ग सुनाना साहिर अली बगा का पश्तो, चलें चलें बिल्कुल सबकी फरमाइशें लगाएंगे, और लेकिन गाने अच्छे अच्छे वाले बोलिएगा. और उसके अलावा दिलावर खान हमारे साथ ही, बहुत शुक्रिया. वासा भाई आ चुके हैं, हेलो वासा भाई, छाला ताने खुश आयो. ओके जी, यासीन खंड भी हमारे साथ मौजूद कहते हैं शिकारपुर से, नियाज भुट्टो शो सुन रहे हैं, वेरी नाइस सॉन्ग, शमन अली मीराली का सुनाइएगा, बिल्कुल सुनाएंगे आपको, और मोहम्मद जमान आ चुके हैं, वेलकम टू द शो, स्वीट बुआ जी आपको भी खुशियामदीद करते हैं, और आबिद नौशीरो से हमारे साथ है जी, फिरोज अली बिरोही भी हमारे साथ है, खुश आमदीद करते हैं भाइयों को, मिदड़ी आ चुकी है, वालेकुम अस्सलाम प्यारी, बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताएं आप कैसी हैं, ठीक ठाक है, और उसके अलावा दर्दे दिल कहती है कि जिंदगी के कुछ सवालों के जवाब दलील से नहीं वक्त से मिलते हैं, वक्त खामोश रहकर भी सब कुछ वाजे कर देता है, कौन मुखलिस था, कौन मतलबी, कौन नेमत बना और कौन सिर्फ एक आजमाइश, वक्त का इंसाफ सबसे मुनफरिद होता है, ना उसे गवाहों की जरूरत होती है ना दलीलों की, वो हर इंसान को उसके अमाल के मुताबिक जवाब दे देता है और उसी में असल हकीकत अश्कार हो जाती है। क्या बात है जी, बहुत बेहतरीन, और आपको खुश आमदीद करते हैं जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड स्किन ब्यूटी शो, और इसी के साथ साथ मैंने आज आप लोगों से जो सवाल पूछ रहा था वो जरा दोबारा से रिपीट करते हैं, और सवाल मैंने आज आप लोगों से पूछा है कि आप मुझे बताएं, अगर एक इंसान की याददाश्त चली जाती है, एक इंसान की मेमोरी लॉस हो जाती है, उसके बाद इंसान सब कुछ भूल जाता है, ये तो आपने सुना ही होगा, देखा ही होगा, तो आप मुझे ये बताइए तो उसे फिर अपनी जबान कैसे याद रह जाती है, वो भी देखा जाए तो उसे भूल देनी चाहिए थी ना, क्योंकि सब कुछ भूल जाता है तो जबान भी भूल देनी चाहिए थी, तो मुझे बताएं ये क्या सीन है भाई, ये क्या मैटर है इसके ऊपर आप क्या कहने वाले हैं, जल्दी से बताइए, शामिल प्रोग्राम होते जाइए और हमारी पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते जाइए। टाइम हुआ चाहता है जी, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास आते हैं, तो सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए, मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूं, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग, व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लगाते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए।
1: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
2: फादिये मेहरान, सिंध की
3: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटरी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

प्रिविलेज सोनू खान लाशारी मीरपुर खास से सुन रहे हैं, भाई को वेलकम करते हैं। और यासीन कहते हैं लगता है आज आपका मूड सही है। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और हिदायतुल्लाह कहते हैं डिप्रेशन। और उसके अलावा सरफराज अली कहते हैं हमें जवाब नहीं आ रहा, हमको नहीं पता। और किशोर भाई कहते हैं टॉपिक ये तो जब मेरी मेमोरी लॉस होगी तभी पता चलेगा। नहीं आपने जो इतनी मूवीज इतने ड्रामे देखे हैं तो बताए ना क्या सीखा उनसे। हाफिज यूनिस बाबर हमारे साथ हैं जी। वालेकुम अस्सलाम, सनाला बिरोई हमें सुन रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, ठीक हुए आप बताएं आप कैसे हैं। ओके जी, तो पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं और आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा शो तो बिल्कुल कीजिए। साथ साथ अगर आप वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो वो सर आप लोगों को बताते हैं कि जब आप वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे तो इस्तेमाल कर पाएंगे ना। तो अगर आप भी वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए हर तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल है, ये तो आप जानते हैं। तो बिल्कुल सी, अगर आप अपनी खूबसूरती को बढ़ाना चाहते हैं, खूबसूरती में चार चांद लगाना चाहते हैं तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम मिल रही है जो कि नाइट क्रीम है। और उसके अलावा व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम नाइट क्रीम के साथ साथ आपको व्हाइट एश की लवली क्रीम मिल रही है जो कि फेयरनेस क्रीम है। तो अगर आप भी व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जो है, अगर आप नाइट क्रीम लगाना पसंद करते हैं तो व्हाइट एश की ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल करेंगे। अगर आप नाइट क्रीम में नहीं लगा पाते हैं, आप लोगों की स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव है लेकिन आपको फेयरनेस फार्मूला चाहिए, फेयरनेस क्रीम चाहिए, तो आप व्हाइट एश लवली क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और व्हाइट एश लवली क्रीम जो कि फेयरनेस फार्मूला है जिसे हर एक इंसान लगा सकता है, दुनिया में जितने सारे लोग हैं वो सारे लोग व्हाइट एश लवली क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्हाइट एश लवली क्रीम जो है ना, वो उसे तैयार इस तरह से किया गया है कि भाई इसे हर कोई इंसान जो है वो लगा सकता है, चाहे आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, टीनेजर्स हैं, लड़के लड़कियां, अंकल आंटियां सभी इस्तेमाल करेंगे। घर का एक एक इंसान व्हाइट एश लवली क्रीम को लगा सकता है क्योंकि जनाब ये रेडियंट अल्ट्रा वाइटमिन का फार्मूला है। 30 वाइटमिन कैप्सूल इसके अंदर एड किए गए हैं और मजे की बात की इसके अंदर सनस्क्रीन भी एड की गई है। ऐसा नहीं कि अब हम ये जो स्ट्रगल था मेरी लाइफ का ये मुझे ही पता है कि भाई मैंने कितनी बार कोशिश करा कि भाई मुझे मेरे टाइप का जो ना स्किन टाइप का सन ब्लॉक मिल जाए लेकिन कभी मिलता ही नहीं था। और ये जो चीज है हमारे पास, अगर बनी बनाई चीज एक मिल जाए हमें जिससे बस हमने सिर्फ फायदा उठाना है, तो आपके पास व्हाइट एज लवली क्रीम मौजूद है जिसके अंदर आपको सन ब्लॉक की क्वालिटीज भी मिल रही है। क्या बात है, बहुत बेहतरीन। और आप इस्तेमाल करेंगे इसे किस तरह, जैसे आप कोई भी फेयरनेस क्रीम लगाते हैं, सुबह लगाएं जब आप किसी काम से जाएं, कोई काम है या आपका कोई जॉब करते हैं, तो आपने बस अपना फेस वॉश करना है और व्हाइट एज लवली क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई कर देनी है। उसके अलावा अगर आपके चेहरे पर एक नहीं प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, आप टीनेजर हैं तो टीनेजर्स की स्किन पे जो ना काफी ज्यादा एक्नीज आ जाते हैं, तो एक्नीज को अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो आपके पास डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब मौजूद है। और डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो है ये फुल आयुर्वेदिक फार्मूला है, यानी कि इसे जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है और ये आपके एक्नीज को तो खत्म करेगा ही करेगा लेकिन उसके साथ साथ इसके और भी बहुत ज्यादा वाले फायदे हैं, जैसे कि आपके चेहरे पर जो एक्नी के निशानात है वो खत्म हो जाते हैं। आपके चेहरे पर अगर बहुत ज्यादा निशानात हैं या फिर जैसे आंखों के हल्के हैं या फिर रिंकल्स आ चुके हैं या फिर कोई चोट का निशान है, कोई जलने का निशान है, इस तरह के कोई भी निशानात अगर आपकी स्किन के ऊपर मौजूद है और आप उन्हें रिमूव करना चाहते हैं तो आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल करके उन्हें जो है ना वो रिमूव सकते हैं। लगाने के तरीके कार भी बिल्कुल आसान है, जैसे आप जो है ना अपना फेस वॉश करते हैं। और हाँ, डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो है ना इसे आप दिन में भी लगाएंगे और रात में भी लगाएंगे, यानी कि आप सुबह में भी लगाइए और रात में भी लगाइए। जब आप सुबह उठें तो आप लगा लीजिए और जब आप सोने लगें तब भी आप लगा लीजिए, लेकिन लगाने से पहले अपना ना फेस वॉश लाजमी किया करें। उसके अलावा अगर आप कोई अच्छा सा साबुन ढूंढ रहे हैं, तलाश है अच्छे से साबुन की, तो आपके पास व्हाइट एश ब्यूटी सोप मौजूद है। और व्हाइट एश ब्यूटी सोप जो है आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाइट एश का ब्यूटी सोप जिसके अंदर एवोकाडो है, एलोवेरा है और मिल्क है। उसके अलावा अगर आप चलें सोप नहीं लगाते हैं, फेस वॉश लगाने वाले इंसान हैं, तो आपके पास व्हाइट एश का जो है ना फेस वॉश भी मौजूद है। ओके जी, तो व्हाइट एज का फेस वॉश भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि विटामिन सी से तैयार किया गया है, जो कि आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है एंटी एजिंग के लिए है। और उसके अलावा इसके अंदर विटामिन ई भी मौजूद है। और मजे की बात बताऊं तो जनाब, विटामिन सी वाला जो ये व्हाइट एज का फेस वॉश है ना, ये इतना क्रीमी फेस वॉश है कि जब आप इसे लगाएंगे तो आप कहेंगे आए हाय मजे ही आ गए। तो बिल्कुल आप इस्तेमाल कीजिए व्हाइट एज का फेस वॉश या फिर सोप, जो भी आपको ईजी लगता है, जो भी चीज आप लगाना पसंद करते हैं, बस लगाते जाइए, अपनी खूबसूरती को बढ़ाते जाइए और हमेशा के लिए टिप टॉप बनी रहिए। और साथ साथ डायल करते रहिए 03 15
7995 ही नंबर आहे जेको तव्हांजी आसानी जे लाइ आहे. अगरि तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते वाई टी जा तमामु प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराइण चाहियो था त देन तव्हांखे ही नंबर डायल करणो पवंदो ऐं नंबर डायल करण खां पोइ तव्हांजे करीबी जनरल स्टोर ते वाई टी जा तमामु प्रोडक्ट्स अवेलेबल थी वेंदा. सो अवेलेबल करायो ऐं पंहिंजे लाइ आसानी पैदा कयो, सम्झो था, पंहिंजे लाइ बि पंहिंजे आस पास जे माण्हुनि जे लाइ बि. ओके, सो वाइट एज जूं एतिरियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके तव्हां इस्तेमालु कंदा त तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी. वधीक तव्हांखे ॿुधाईंदा बि रहंदासीं. और विलेज से गुलाम कासिम सोलंगी फ्रॉम हिंगूजा से दिलावर हुसैन सोलंगी बाजी सिद्धराब कैसी है और शहनी शेला गुल का गाना सुनाइएगा और कहते हैं 8 दिन हो चुके हैं आज मुझे मुझ पर नहीं नहीं आज लास्ट टाइम आपका गाना मैंने चलाया था कुछ शायद 1-2 दिन हुए और चले मैं कोशिश करूंगी आज जो आपने गाने की फरमाइश करी लगाएंगे. डेडिकेशन आपकी जा रही है किसको? नजीर सोलंगी, आसिफ सोलंगी, सलीम एंड तैयब सोलंगी के नाम. चले जी, बहुत शुक्रिया हो गया आपका. और फहद डेरी है सऊद डेरी फ्रॉम नवाबशाह सलामती शो नाइस है तमाम जो मोहब्बतों प्यारे भाजी. और हमारे साथ है जी प्रिंस अहमद अली रिंद फ्रॉम अहमद अब्बास. वालेकुम अस्सलाम, कहते सलाम पाक आर्मी स्वीट शो. प्लीज दीबा सहर का कोई भी सॉन्ग अपनी पसंद का प्ले कीजिएगा. ओके डन. और हमारे साथ है जी ये दादू खान हैदरी फारूक हैदर जतोई सॉन्ग मास्टर मंजूर जो हाजिर हाजिर हलायूं था.

अच्छा अच्छा था जो अदा जब आप इस दुनिया में आई थी तुझी जुबान केड़ी हुई मुझी जुबान त हुई पर मां कुछ गालाई थी कोन हुयो मुझे एतरो एटीट्यूड हुयो मां बिन सालन ताई केसा गालो ही कोन हुयो मां हाणे भी घटि ॻाल्हाईंदी आहियां पर ॿिनि सालनि ताईं कंहिंसां ॻाल्हायो ई कोन हुयो ॾिसो त लही छोकिरीअ जी अच्छा मिठो सुमड़ो मारे साथ मिस्त्री ओके जी फ्रॉम खानपुर महर से शो सुन रहा हूँ प्रोग्राम लशपश है और इंजॉय कर रही हैं आपकी आवाज को प्लीज फायजा अली का गाना सुनेगा दोस्त मुमताज अली सुमरो एंड फराज अली सुमरो सजाद अली सुमरो के नाम चले मैं बिल्कुल आपकी फरमाइश का गाना लगा दूंगी और मोहम्मद अली खोसो हमारे साथ वालेकुम अस्सलाम हैदराबाद अच्छा हैदराबाद से आप हमारे शो सुन रहे हैं आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है उसके लिए बहुत शुक्रिया आपको वेलकम करते हैं ओके जी महामान जमा लिखते हैं टॉपिक

कहती हैं आप ही, आप बहुत अच्छा करती हैं, ड्रामे नहीं देखती हैं, मैं भी नहीं देखती हूँ, कभी कभी अरीबा जोई मुझे ड्रामा दिखाती है तो देखकर मुझे शायद आपको गुस्सा आता होगा, इसके बाद आपका मैसेज मिसिंग पार्ट हो चुका है। नहीं, पहले मैं बहुत देखती थी, लेकिन अब जरा मैंने खुद के ऊपर कंट्रोल लगाया है कि ये सही नहीं है दया, तो थोड़ा अपनी जिंदगी में इंसान को सीरियस होना चाहिए।

नहीं था, नोवा था वो गरीबा. गरीबा जला नाइट है वो. नो प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एश एंड जी स्किन ब्यूटी शो. स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से लगाते जाइए खूबसूरतियां हासिल करते जाइए. एम अंसारी लिखते हैं कि लेकिन लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जो फितरतन मिली हुई है और फितरत इंसान में ऊपर से डाउनलोड होती है. अच्छा मनैया गाल हुई. सही. अली अकबर बड़ोई भाई हमें सुन रहे हैं सक्रीम से खुश आमदीद भाई जान. फहीम कहते हैं सावट ऑलरेडी अवेलेबल आई छोकरी जाई बुधा तो कहो प्रोडक्ट बतू थव.

0: हाउ हाउ मुखे याद आणे न्यूज ब्रेक जो टाइम थियो ना कपे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक आए तमा गाडे न वंजो एदे वेठा वजो बा ओ यो मनी ओ यो मोटान थी सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हनो था कोन बुदायो तो सही खबर तो पवे सोना थे आयो या कोन
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत।
3: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

है अमेरिका के मुदाखलत करण न ॾींदासीं। ट्रंप जे धमकियुनि ते अमल कयो वियो ऐं ईरान जे बुनियादी ढांचे खे निशानो बणायो वियो त किथे ईरान जी रेड लाइन आहे, अमेरिका खे मुदाखलत करण न ॾींदासीं। ट्रंप जे धमकियुनि ते अमल कयो वियो ऐं ईरान जे बुनियादी ढांचे खे निशानो बणायो वियो त किथे जे बचियल इंफ्रास्ट्रक्चर जो वजूद न रहंदो। ईरानी फ़ौज जो जवाब बराबरी वारो न पर घणो वधीक वारो हूंदो। अमेरिका ऐं ईरान जा हिक ॿिए ते हमला जारी। अमेरिकी फ़ौज जा ईरान जे मुख़्तलिफ़ शहरनि ते फिज़ाई हमला। ईरानी शहर सेमलान में हवाई अॾे खे बि निशानो बणायो वियो। सेनेट काम मूजिबि अमेरिकी फ़ौज अपना हर्मुज में ख़तरो बणजंदड़ ईरानी सलाहियतनि खे निशानो बणायो आहे। ईरान जा बि ख़िते में मौजूद अमेरिकी अॾनि ते ड्रोन ऐं मिज़बाह करण जी तसदीक करे छॾी। पाकिस्तान हिकु भेरो ॿीहर अमेरिका ऐं ईरान में शुरू थियल चिकताण ते गणती ज़ाहिर करे छॾी। धुरियुनि खां सहप ऐं सब्र जो मुज़ाहिरो करण जो मुतालबो। मसलो ॻाल्हियुनि ज़रिए हल करण ते ज़ोर। परॾेही तर्जुमान ताहिर हुसैन अंदराबी चयो आहे त हिते जी मौजूदा सूरतहाल ते नज़र आहे।

मोकिलण बाबति ब्रीफिंग डि॒नी वई आहे। ब्रीफिंग में सदर ट्रम्प खे ईरानी बेटन ते कब्ज़ो करण समेत शदीद फौजी कार्रवाइयुनि बाबति बि ब्रीफिंग डि॒नी वई आहे। ज़मीनी फौज मोकिलण बाबति हतमी फ़ैसिलो सदर ट्रम्प कंदो। नायब वज़ीर आज़म एहसान वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह पारां कणक ज़खीरो ऐं अटो महांगो कंदड़नि ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जी हिदायत। सैद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि खुराक खाते बाबति इजलास। सूबे मां 6,10,000 मैट्रिक टन कणक गुम हुजण जी तसदीक। अमलदारनि पारां गुम थियल कणक मां 1,72,000 मैट्रिक टन कणक हथ करण जी दावा। खुराक खाते पारां कणक जी खोट पूरी करण लाइ पास्को खां वधीक कणक ख़रीद करण जी तजवीज़। वॾे वज़ीर चयो त ग़िज़ाई खोट पूरी करण लाइ हर मुमकिन क़दम खणंदासीं।

सिंध जे सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमण मौलाना फजल रहमान खां शहीदन बाबत बयान वापस वठण जो मुतालबो करे छड्यो। शर्जील इनाम मेमण चयो त मौलाना फजल रहमान शहीदन बाबत दिनल बयान पांजो वापस वठे। बयान वापस वठण सां मौलाना फजल रहमान जी इज्जत घट न थींदी। मौलाना फजल रहमान मामले के अनाजो मसलो न बणाए। शहीद नए गाजिन बाबत बयान जी सख्त लफ्जन में मजम्मत करूं था। शहीद पाकिस्तान जो असासो है, असाजो फख्र आहिन। बयानबाजी से शहीदन के रुतबे के को भी नुकसान न तो पहुंचे। सिंध में पानी के खोट खिलाफ आबादगार सरापा एहतजाज। मुख्तलिफ शहर में मुजाहरा धरना। नंदू में हारे ने आबादगार प्रेस क्लब अगया भुख हड़ताल कई। ठिकराटो में महर माइनर के आबादगार पानी खोट खिलाफ एहतजाज किया। अठहठ मोरिय के आबादगार जाम लगारी शाख में पानी खोट खिलाफ एहतजाज किया। पोछड़ ताई पानी पहुंचाने जो मुतालबो। चोहर जमाली वेझो बिन धुरिन में मामूली गाल तां जेड़ो। एक जणो कतल। गोठ गुल मोहम्मद छेरजो में छेरजा बिरादरी के बिन धुरिन में जेड़ो थियो। जवाबदार गुलाम नबी छेरजो के लतू मुकू हणी कतल कयो। एक जणे जे कतल बाद धुरिन में चिकटाण वधी वही। गोठ में खौफ पखेड़ियल। कराची की अदालत में फुर मजामत कतल थियल डॉक्टर आकाश केस की बुधड़ी। गिरफ्तार जवाबदार सुरेश रामचंद अनिल अदालत में पेश। अदालत टिन्ही जवाबदार के सत डीन की जजामत कतल थियल डॉक्टर आकाश केस की बुधड़ी। गिरफ्तार जवाबदार सुरेश रामचंद अनिल अदालत में पेश। अदालत टिन्ही जवाबदार के सत डीन की जिस्मानी रिमांड से पुलिस हवाले कर छो। सांगड़ में पुलिस लॉकअप में फोत थियल बीएसपी जे डिवाइस होल्डर जे वारसन जो लाश रखी धरणो। पुलिस ते अब्दुल्ला लांडर के तशद्दुद करे मारण जो इल्जाम। जिम्मेवार अहलकारन खिलाफ कार्रवाई जो मुतालबो। पुलिस चयो आहे त अब्दुल्ला दिल बीहण सबब फोत थियो आहे। सखर जे सेंटर जेल में कैदी मुबैना तौर फाहो खाई आबगात करे छो। चौवीह वरियन के कैदी दिनेश कुमार जेल अस्पताल के वॉशरूम में अगट सा फाहो खाई। जेल इंतजामिया जो चवण है त आबघात कंदड़ कैदी के शराब के केस में जेल मुंतकिल कयो वयो हो। वारसन लाश जो पोस्टमार्टम करण का इनकार कर छो है।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट:

0: कालम में मौजूद आहिन फौजी भाईरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 हैं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0302018-00003
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नजगर्लस डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
5: 0301-399-2836
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।
4: ओके जी, आप लोग जब तक कॉल करें तो मैं ऐसा करती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ थोड़ा सा डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि पहले आप लोगों को व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, तो अभी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताते हैं, ताकि आप लोगों को पता चले कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो उसका इस्तेमाल आपकी खूबसूरती को कैसे बढ़ाने वाला है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम, सबसे पहली बात तो ये है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया हुआ प्रोडक्ट है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव है, हम नॉर्मल से प्रोडक्ट नहीं लगा पाते हैं, तो जनाब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों की स्किन के मुताबिक है, सेंसिटिव टाइप के लिए भी है, और इसके अंदर विटामिन ई बीड्स हैं, माइक्रो बीड्स फॉर्मुलेशन है, जो कि भाई पाकिस्तान में दो तीन प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि विटामिन ई बीड्स से तैयार किए गए हैं, तो उन्हीं में डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी आती है। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का ये प्रोडक्ट आपको लगेगा, जो कि वाकई है, और बहुत ही बेहतरीन सी इसकी क्वालिटी है। अगर देखा जाए तो पैकेजिंग के हिसाब से बात करें तो पैकेजिंग भी बहुत मस्त है जनाब। आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि आप वाकई कितना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लगे हैं। ओके जी, इसी के साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है अगर आप इस्तेमाल करती तो आपको दो रातों में जो है वो रिजल्ट देना स्टार्ट कर देती है। तो अगर आप दो रातें लगाना चाहते हैं, दो रातें आप लगाने वाले हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों को बहुत अच्छे वाले रिजल्ट देना शुरू कर देगी। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप करें और आपकी खूबसूरती जो है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी खूबसूरती की हिफाजत के लिए तैयार की गई है। एक मयारी ब्यूटी क्रीम है, ये जल्द को नमी फराहम करती है, चेहरे को नरम, मुलायम और तरोताजा रखने में मदद देती है। इसका बाकायदा इस्तेमाल आपकी जल्द की जो पैरों की है वो कम कर देता है, और चेहरा ज्यादा साफ, रोशन और दिलकश बन जाता है। तो आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसके अंदर जो है वो जितनी भी चीजें ऐड की गई हैं वो बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही बेस्ट है। तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम जरूर लगाइएगा, और साथ में डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल भी कीजिएगा, क्योंकि जनाब डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, ये भी बहुत ही कमाल की चीज है। तो डी स्किन फेस वॉश जो कि हायलूरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है, जो कि आपकी स्किन को क्लीन करता है, मॉइस्चराइज करता है, और उसके अलावा हाइड्रेट

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ते जिला आसिम हुसैन आराई, 0307-3592120।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لے 0301-196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-002724 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुख्य बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

होगा जी, कुछ लोगों के कमेंट्स ऊपर चले गए होंगे, तो जिनको लगता है कि ये मेरा कमेंट नहीं अभी तक पढ़ा तो वो जरा दोबारा मुझे शेयर कीजिए. फरहान अली मीरानी हमारे साथ, फरहान अली मीरानी कहते हैं नाइस प्रोग्राम, थैंक यू जी, आपको खुश आमदीद करते हैं.

ओके जी, सो किशोर भाई कहते हैं कि जब हम 2-3 साल के होते हैं तब हमें ये कैसे पता चलता है कि हमारी जबान क्या है, हम सिंधी है या उर्दू स्पीकिंग है? ये एक नेचुरली सामने वाले को बोलता देकर ऑटोमेटिक हमारी जबान वही बोलती है, समझ गई या अगली भी गई? नहीं, मैं बिल्कुल समझ गई जो आप कहना चाहते हैं. इसे दरअसल शेडोविंग कहते हैं, जो हम सुनते हैं वो हमारे दिमाग में सेट हो जाता है, क्योंकि उसको जो है ना वो मसल मेमोरी जो है ना वो फिट कर

इसका थोड़ा सा टेक्निकल जवाब हो सकता है, लेकिन अगर हम फन में लें तो सही है. समझ गए होंगे. अच्छा, और ये है जी फरहान अली मीरानी, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू. और फहीम कहते हैं हमने वाइट एश लवली क्रीम ले ली. अच्छा, और एक फेस वॉश सर खाली जूने जो को भेजा है. चलिए जी, जबरदस्त हो गया. और उनका अलावा है जी मूसा एम के कोरी, कहते हैं सलाम जी, वालेकुम असलाम. आमिर अली हमारे साथ हैं, आमिर अली बलोच फ्रॉम कंबर. जी, सो आपको भी वेलकम करते हैं. आमिर अली, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है, थैंक यू सो मच. अच्छा, दीदार अली बिरोही भाई हैं, कहते विलेज खान मोहम्मद बिरोही से प्लीज प्ले सॉन्ग बिरोही. ओके, आई विल ट्राई. शफकत अली खान हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं.

ओके जी क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना सुन रही हूँ। और हिदायतुल्लाह कहते हैं कि तव्हांजे प्रोग्राम में अचण जी आदत जो आ सिर वञे या आदत वञे नन्ना बाबा बई चीजों हुजन सलामत। और लियाकत खान लियाकत अली अवान हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, सब दोस्तों को सलाम, बहुत शुक्रिया जी। जीशान राजपूत आ चुके हैं, हेलो। अच्छा किशोर भाई तव्हां समझी वेंदा कयो न, अगरि हिकिड़ो ॾींहुं नथी वठां त ॿिए ॾींहुं वठणियूं पवंदियूं। इट्स मजबूरी। मामा समान कहते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं मामा समान भाई जान। ओके जी, और बिलाल अली भी आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम बिलाल। और निदली कहती है नंबर मुसलसल बिजी ही यानी कि आप भी ट्राई कर रही थी, क्या बात है।

कहूंगी जी क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना हमने सुना. एक और ब्यूटीफुल गाना हमारी लिस्ट में है सुना, जो कि ओएसटी होने वाला है. ओके जी, तो ये भी सुनेंगे और साथ साथ हैं हमारे साथ. गुड इवनिंग, हाय हाउ आर यू, योर शो इज वेरी नाइस, दिस इज अल्ताफ अली गादी बलोच फ्रॉम कराची. अल्ताफ भाई आपको वेलकम करते हैं. चाचा खालिद आ चुके हैं, कहते हैं बेटा सिडो अस्सलाम वालेकुम, सॉन्ग की रिक्वेस्ट है प्लीज प्ले. साबित करे छे पर आयो नेट पर आयो थी दुआ आई लीड़े, कहते हैं डेडिकेट. अच्छा चले टाइम बच गया तो लगाते, नहीं तो हम 5 बजे वाले प्रोग्राम में सुन लेंगे. और नदीम अली शेख है, मुंतजर मुतहिर शेख फ्रॉम विलेज भीरू. आप ही सिदरा? अच्छा अहमद मुगल के गाने की आपने फरमाइश कर दी है, कहते हैं हम आपका शो बड़े शौक से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू. और अल्ताफ हुसैन राहे जो है नवाब शाह. सिदरा बाजी आप कैसी हैं, शो तो आपका वेरी नाइस है. बाजी बलोची गाना प्ले कर जो डेडिकेट सदाम राहे जो, सजाद राहे जो एंड आपको, बहुत शुक्रिया जी. और मेरे पर खासी अब्दुल्ला बहर ने कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. ओके जी, अब्दुल्ला महर भी कहते हैं कि मैं व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम लगाता हूं, तो बिल्कुल जी व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम लगाते रहिए और साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम का भी इस्तेमाल करें. अच्छा वैसे जो हम कॉल्स लेते हैं ना, तो कुछ भाई लोग कॉल पर आते हैं जो कहते हैं कि भाई डी एस क्रीम, अब ये है कि इसका नाम डी एस नहीं है. जब आप दुकान पर जाते हैं ना, आप लोगों को प्रॉपर प्रोडक्ट का नाम नहीं होता ना पता, तो दुकानदार समझता है कि इसको उल्लू बनाना तो बहुत आसान है, तो वो आपको उल्लू बना देता है. ऐसा मत किया करें, आपको प्रोडक्ट का नाम सही से पता होना चाहिए. डी एस नहीं है, डी स्किन है. और वो कहते हैं ना नकालों से होशियार रहे. तो बिल्कुल वैसे ही, अगर आप मार्केट जाएं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ही परचेज करें, ठीक है, नाम आपको आना चाहिए.

पता नहीं चला क्या इश्क है इश्क ये तो सुन लिया. अच्छा जी, और अली अकबर ब्रोही भाई हमारे साथ हैं, खुश आमदीद कहते हैं जी आपको भी. और उनका अलावा एमन सारी कहते हैं नोट प्रिपेयर फॉर कॉलिंग, लग गई कैसे मैं इस शौक में शॉक्ड हूँ. ऐसे ही होता है, अच्छी चीजें जिंदगी में से सडनली आ जाती है, फिर इंसान जो है ना वो समझ नहीं पाता कि ये क्या हो गया. लेकिन अब आप ऐसे ही कोशिश करते रहें, आपकी कॉल लगती रहेगी.

0: इतनी बुरी मौत अल्लाह बचाए. पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और बताइए जरा कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाइट एज की लगा रहे हैं या फिर डी स्किन के लगा रहे हैं. और साथ साथ अनवर भाई कहते हैं कि चांद से तो नहीं अलबत्ता सूरज से पर्दा जरूर कीजिए, नहीं तो वो सच में आपके चेहरे का नूर चुरा लेगा. बिल्कुल जी, ये हकीकत बात करी अनवर भाई ने, तो जरूर पर्दा कीजिए. और उसके अलावा हैं जी हमारे साथ अनवर भाई, बहुत शुक्रिया आपका, इतने सारे कमेंट्स कर दिए हैं.
1: जिंदगी क्या थी के जीने की तरह जी ना सके, हम के झूठे थे जो सांसों की जगह चलते रहे.

या ना कि हमने ये गाना सुना था, उस गाने से हमने ये सीखा कि यार की गली में मर जाना इश्क है, अगर आप यार की गली में नहीं मरते तो वो इश्क नहीं है. भाई क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. अच्छा अली हसन हमारे साथ फ्रॉम कोयटा कहते हैं, दुआ आदाब सलाम खुश आमदीद, वेलकम शो इज नाइस और गुड आफ्टरनून. खुश आमदीद अली हसन आपको वेलकम करते हैं. और अनवर भाई कहते हैं जो प्रोग्राम है बुद्धि सगू. अच्छा तमावट थोड़ा नेटवर्क जो इशू हुआ, चलें कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, आपको हम वेलकम कर देते हैं. आतिफ असलम का गाना आ चुका है जी लिस्ट में और ये गाना हमारे प्रोग्राम का लास्ट ट्रैक भी होने वाला है. और चाचा खालिद आप हमारे साथ मौजूद कहते हैं, थैंक यू जी चाचा मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं, मजे में हैं और कहाँ बिजी थे. बिलाल कहते हैं कि पहले मेरा काम करने को दिल नहीं करता था, फिर मैंने मेहनती लोगों के साथ बैठना शुरू कर दिया, अब उनका भी काम करने को दिल नहीं करता. यस इसे कहते हैं चेंजिंग, तब्दीली. हर इंसान को अपनी जिंदगी में चेंजिंग लानी चाहिए.

अच्छा चाचा खालिद, आपने टॉपिक के ऊपर जवाब दिया है, इसे ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच. कहते हैं मैंने AI यूज नहीं किया. करना भी नहीं चाहिए. और दर्द दिल कहती है कि कहाँ से लाती हो ऐसा टॉपिक चंदा, दिमाग का दही बना दिया तुमने, सच बताओ. और उसका सही है, थैंक यू. एमन सारी कहते हैं बेनजीर हिरा सनोबर भी चुपके से यू को सुन रही हैं. बेनजीर हिरा और सनोबर सबको वेलकम कहते हैं. ओ ये तो ये घुन्ना लिसनर है.

0: It's 3 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri, neem prickly heat. Fakiri,
2: neem. स्टोर से नाम लेकर कीजिए.
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
4: जो इरादो ना है जेकर अमेरिका जी जंग जारी रही तो जंग नवन मुहाजन सा पकड़ी वी ईरानी फौज मुल्की वकार सलामती ए सरहदन जो तहफुज करण जाने थी. जो तहफुज करण जाने थी

अमेरिका ईरान जायकबे ते हमला जारी है। अमेरिकी फौज ईरान के मुख्तलिफ शहर ते फिजाई हमला। ईरानी शहर सेमनान में हवाई अड्डे के भी निशानो बनाया वो। सेनेट काम मौजूद अमेरिकी फौज आबना हरमुज में खतरो बणजंदड़ ईरानी सलाहतन के निशानो बनाया है। ईरान जाबे खिते में मौजूद अमेरिकी

0: ஈரான் புர்ஜே. अमेरिका ईरान में जमीनी फौज मोकलण ते गौर शुरू करे छड़ियो. अबनार मुस भरसा ईरानी बेटन ते अमेरिकी फौज मोकलण जो इम्कान. अमेरिकी अखबार अमेरिका ईरान में जमीनी फौज मोकलण ते गौर शुरू करे छड़ियो. अबनार मुस भरसा ईरानी बेटन सा गड ईरान में जमीनी फौज मोकलण बाबत ब्रीफिंग दिनी वई आहे. ब्रीफिंग में सदर ट्रम्प के ईरानी बेटन ते कब्जो करण समेत शदीद फौजी कार्रवाई बाबत भी ब्रीफिंग दिनी वई आहे. जमीनी फौज मोकलण बाबत हतमी फैसलो सदर ट्रम्प कंदो. नायब वजीर आजम इसहाक डार एक डी के दौरे ते चीन रवानो. इसहाक डार शंघाई में चीनी कयादत से मुलाकातू कंदो. खिते की सूरत हाल ते गाल बोल थींदी. वरे वजीर सैद मुराद अली शाह पारा कणक जखीरो अटो महंगो कदन खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत. सैद मुराद अली शाह की सदारत हेठ होरा खाते बाबत इजलास. सूबे में 6,10,000 मैट्रिक टन कणक गुम होजन की तस्दीक. अमलदारन पारा गुम थियल कणक में 1,72,000 मैट्रिक टन कणक हथ कर दावा. खोरा खाते पारा कणक की खोट पूरी करण लाए पास्को का वधीक कणक खरीद करण की तजवीज. वरे वजीर चयो त गिज़ाई खोट पूरी करण लाए हर मुमकिन कदम खणंदासीं.
1: चंद दिन पहले एक खिताब के दौरान हमारे पाक अफवाज के जवानों, हमारे शौदा और हमारे गाजियों के बारे में कमेंट किया गया, जिसके हम भरपूर अल्फाज में मुजम्मत करते हैं. आप किसी इदारे को इस तरह स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दें और खुशी तक उनके शौदा के लिए ये बहुत बड़ी जाती है. ये नहीं, किसी भी सूरत नहीं होना चाहिए. हम समझते हैं मौलाना साहब इस बयान को स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दें और खुशी तक उनके शौदा के लिए ये बहुत बड़ी जाती है.
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
3: इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो. इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे. सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे. होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद. इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर. फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी. होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी. इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320180003.
4: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ. अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है. गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे. सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार. फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर. नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है. आज ही अपनी अपॉइंटमेंट करवाएं. पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद ठरी रोड मेहरापुर 0300338569.

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बैरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-41-456 तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई
1: अदा? नौ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे।

0: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थी
1: न अदा
2: यार अजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
0: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
1: अदा जल्दी कर मुखे मुंजी एड्रेस बुधा
2: ऑफिस जी मेरा पर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
0: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाएं, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर। राब्ते जे लाए 0320180003।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300338569।

अब बर्तन चाहे कितना ही ज्यादा क्यों ना जल गया, उसका आसान ये तरीका जिसे आप अप्लाई करेंगे ये बर्तन को बिल्कुल नया बना देगा। करना आपने ये है कि बहुत ज्यादा जो जला हुआ बर्तन है उसमें 2 खाने के चम्मच बेकिंग सोडा डालने हैं और उसके बाद उसे पानी शामिल करना है और 10-10 मिनट के लिए इसे अच्छे से उबलने के लिए रख दें। जब ये पानी अच्छे से उबल जाए तो फिर इस चूल्हे को जो है फ्लेम ऑफ कर दें और इसे जो है उस बर्तन को और पानी को ठंडा होने दें। ठंडा हो जाने पर स्पंज या ब्रश से आहिस्ता आहिस्ता नरम हाथों से जो है आप इस बर्तन को वॉश करेंगे तो ये जितना भी जला हुआ बर्तन है ये ठीक होगा। इसमें अगर आप थोड़ा सा लीमू का रस या सिरका भी शामिल करके अच्छे से जो है आप इसे वॉश करेंगे तो आपको जले हुए बर्तन जो है वो ऐसा फील होगा जैसे बिल्कुल न्यू खरीदा है आपने। तो जनाब ये है टिप आज का और इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताने वाली हूँ नेटा के बैंकॉक में वाकई दफ्तर में उस वक्त गैर मामूली सूरत हाल पैदा होगी जब पार्सल गुलहरी कुछ देर तक दफ्तर के मुख्तलिफ हिस्सों में घूमती रही जिसके बाद वहां मौजूद जो अमला है उसमें जो है हलचल मच गई यानी के परेशान हो गए सबके सब। जब गुलहरी जो है ऑफिस में छलांगे लगा रही थी तो सफाई करने वाले अमले के एक रुकन की उंगली में जो है मामूली सी खराश भी आई, लेकिन मुतालका टीम की जानिब से जल्द ही गुलहरी को बाहिफाजत पकड़ कर सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। इस गैर मामूली वाकये के बाद एक मुलाजिम ने एआई का इस्तेमाल करते हुए गुलहरी से मुतालिक तदाबीर पर मबनी मजाहिया वीडियो भी बनाई, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, पार्सल से गुलहरी आ गई बाहर और ये गुलहरी जो है वो सांस कैसे ले रही थी किसी बंद पार्सल के अंदर, सोचने वाली बात है ना। हैरत अंगेज बात है मेरे लिए तो। और मास्को में रूस में फौजी मश के दौरान अचानक मशीन गन बेकाबू हो गई, उससे अंधाधुंध फायरिंग होने लगी जिसकी वजह से करीब खड़े फौजी की कलाबाजियां लग गई। आज जाने कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड जो सिचुएशन आ जाती है तो जनाब हर किसी को अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं, सही है ना। फी मिनट 5,000 गोलियां फायर करने की सलाहियत वाला हथियार बेकाबू होकर घूमने और फायर करने लगा। हथियार के अचानक साकेट से निकलने के नतीजे में फौजी हवा में उछलकर दूर जा गिरा और इस अजीब वाकये और खतरनाक वाकये की सोशल मीडिया पे वीडियो जो है वो तेजी से वायरल हो रही है। हम इस वीडियो की आजादाना तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी, ना ही ये वाजे कि ये वाकया कब और कहां पेश आया। वैल जना वहाँ जितने भी फौजी मौजूद थे उन सब फौजी भाइयों से मुझे हमदर्दी महसूस हो रही है। सीधी सी बात है, ऐसी अचानक उफ्ताद अगर किसी के भी सर पे आ पड़ेगी तो उसने जो है ऐसे ही रिएक्ट करना है।

0: जी अक्सर इस तरह ऐसा होता है जब हम अपनी फैमिली के किसी भी फैमिली मेंबर की जो है बीमारी की वजह से डिस्टर्ब होते हैं, परेशान होते हैं। और ऐसा ही एक वाकया जो है वो पड़ोसी मुल्क में पेश आया, जब शीरख्वार बच्चे के अहलखाना ने खातून डॉक्टर पर तिब्बी गफलत का इल्ज़ाम लगाया। उसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। 18 महीने के बच्चे को होंठ पर जख्मी की वजह से टांके लगाने के लिए एनेस्थीसिया दिया गया था, जिसके बाद वो 5 दिन तक तश्वीशनाक हालत में रहा। दीवांश नामी ये बच्चा 5 जुलाई को अपने घर के सहन में खेलते हुए गिरा, जिससे इसके होंठों पर कट लग गया था। इसे बेबी मेमोरियल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ जख्म पर टांके लगाने के लिए उसे बेहोशी की दवा दी गई, जिसके फौरन बाद उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई और वो दोबारा होश में ना आया। अस्पताल ने बच्चे के अहले खाना के तिब्बी गफलत के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए बचाया। बच्चे को एनेस्थीसिया देने के फौरन बाद अचानक दिल का दौरा पड़ा था, जिस पर उसे फौरी तौर पर वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया था। और इंतजामिया ने कहा, दवा की बिल्कुल सही निपितुली मकदार देने के बावजूद भी एनेस्थीसिया के बाद ऐसी पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। डॉक्टरों ने सर्जरी के दौरान तमाम तिब्बी कानून पर अमल किया था, बच्चे की जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश की गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है ये बच्चा जानवर ना हो सका। और ये एक वाकया ऐसा कि जाहिर सी बात है, जिनका बच्चा उनकी फैमिली में तो जाहिर सी बात है वो सब लोग डिस्टर्ब हुए हैं। एक्सपेक्टेड होता है और सबसे ज्यादा जो इंसान हर्ट होता है। के जो बंदे को बिल्कुल मतलब इतनी ज्यादा खराब कंडीशन में हॉस्पिटल नहीं लेके जाते, लेकिन जब बंदा वहां से वापस दुरुस्त हालत में नहीं आता तो ये बहुत बड़ा एक लॉस होता है। श्रीलंका में जारी एक मकामी क्रिकेट पड़ा और वो वहीं गिर गया। वहां मौजूद खिलाड़ियों इंतजामिया ने फौरी तौर पर इसे तिब्बी इमदाद देने की कोशिश की, ताहम वो जानवर न हो सका, मौके पर ही दम तोड़ गया। और जनाब जो इस दुनिया में आया है, हमारा अकीदा तो यह है कि उसने दुनिया से वापस जाना है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड जो डेथ उससे जो है मुतासरा जो फैमिली होती है ना, उन्हें सब्र नहीं आता। अल्लाह ताला सबके मामला में आसानी करे। वेल जनाब यहाँ पर एक छोटे से तशहीरी वक्फे का वक्त हुआ जाता है, इस छोटे से ब्रेक के बाद हम आप दोबारा ज्वाइन करते हैं।
1: हर दिन जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क
2: कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिनट ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

کم ہے، وعدہ اللہ شریک ہے، اور اس بات میں کوئی